0: careful attention to the Russian interests, the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that. Recently, your foreign minister, Mr. Jaishankar, visited Moscow and conveyed your message. I fully share everything that is said there. Next year, we are celebrating the 80th anniversary of our diplomatic relations. And of course, we're doing serious preparations for the upcoming BRICS summit in New Delhi in September. Our trade and economic cooperation is demonstrated generally positive momentum. Last year, we saw a little increase, but in the first half year of 2026, our trade turnover grew by 2.6%. A week ago, Moscow hosted the session of the Intergovernmental Committee and good results. I'd also like to say a couple of words about humanitarian cooperation of ours. I'd like to know that India is among the top countries in terms of its students in Russia. In the recent years, this figure has grown by 7 times, and it amounts to 40,000 students now. We regularly hold cultural festivals of India and Russia. The 2027 will see another round of the festivals in India. We also have active tourist flows, mutual flows. We've seen 16% growth. We closely coordinate our efforts at the United Nations, at BRICS, the G20, and the SCO. And today we have a good chance to compare our notes and to outline future cooperation when it comes to the development of the Russian-Indian.
1: Excellency, my friend, aapse milkar मुझे बहुत ही खुशी हो रही है पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं यह हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा एक्सलेंसी यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था जैसा कि आप जानते हैं भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है उमंग से भर देती है हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है

0: Another vital step to ensuring energy self-sufficiency, India decided to finalize a long-term agreement with Uzbekistan for the supply of uranium. The deal will guarantee a steady supply of raw nuclear material from Uzbekistan, which accounts for nearly 6.6% of the world's uranium production. And this underscores New Delhi's drive to diversify its strategic energy imports and stabilize domestic power in base load nuclear power.
1: Uranium ki supply ke liye dono paksh long term vyavastha banayenge. आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं. हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए.
0: इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो सीन एज पार्ट ऑफ इंडियाज गोल टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 व्हेन द कंट्री कंप्लीट्स 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड India operates 24 nuclear power reactors with a capacity of 8.78 gigawatt. Listen in to Prime Minister Modi outlining India's nuclear vision during his Independence Day address.
1: Energy, ये हमारे समय की मांग है और इसे पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं. एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी. हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है. 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं. इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य ले रहे हैं.
0: इनफैक्ट इंडिया हैज बीन बिल्डिंग अ ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई चेन बाय सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म सप्लाईज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया ऑलरेडी हैज अ लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट विद कजाकिस्तान, व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम. इनफैक्ट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू कैनेडा इन मार्च, अ कनेडियन फर्म entered into a commercial agreement with India's Department of Atomic Energy. As a result, India will get nearly 22 million pounds of uranium ore concentrate from Canada between 2027 to 2035. And this will contribute to the country's civil nuclear energy generation, clean energy transition objectives, and also long-term energy security. That's not all. When Prime Minister Modi met the Australian Prime Minister in Melbourne last month, both sides finalized administrative arrangements to enable the export of Australian uranium to India for peaceful purposes. This was in pursuance of provisions under the

0: से फॉर उसी दिशा में जाना जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: Prime Minister Modi holds key bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin at the sidelines of the SEO summit, asks him to move on from endless wars to end of war.